सुप्रभात, नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन है सोमवार, सक संबत 1948, भाद्र माह की 2 तारीख और अंग्रेजी वर्ष 2026 अगस्त महीने की 24 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं सुवर्णा स्वागत करती हूँ आज की हमारी पहली सभा में।

0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र

0: के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है।

श्रोताओ, आइए एक बार नजर डालते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीत, फिर 6:30 पर आप सुन पाएंगे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम, 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप सुन पाएंगे आज का दिन पर आधारित कुछ ऐतिहासिक बातें, इसके पश्चात 7:30 पर आप आनंद ले पाएंगे कुछ फिल्मी गीतों का, 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रभात, देशभक्ति गीतों का आनंद आप ले पाएंगे 8:15 पर, 8:30 पर आप सुन पाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

सुरों की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पौराचलिक बातुरी। 9:15 से आरंभ होगा स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम, जिसमें आप सबसे पहले सुन पाएंगे खेलमा भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे फुनस्यम थे नेबॉम और उनके साथी। रांगखॉल कार्यक्रम के तहत आधुनिक गीतों का आनंद आप ले पाएंगे 9:25 पर। गायक कलाकार रहेंगे हाइथोईलाल रांगखॉल और उनके साथियों की आवाज़ में। 9:35 पर पेश करेंगे जयंतिया कार्यक्रम के अंतर्गत जयंतिया भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे मैलंग भलंग प्रिंगे और उनके साथी। 9:45 पर आप आनंद ले पाएंगे बियते कार्यक्रम के तहत। बियते भक्ति गीत, गायक कलाकार रहेंगे ललबियक संगीत हंगलाई और उनके साथी।

12 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। फिर दिन 12:05 पर आप दोबारा आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। 1 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फिर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन पाएंगे विविध भारती का कार्यक्रम। समय रहेगा 1:05। 2 बजे आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज। फिर 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर आप फिर से सुन पाएंगे विविध भारती का कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। चार बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। 4:05 से आप फिर आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। ये थी आज की पहली सभा के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, शुरू करते हैं आज की पहली सभा के कार्यक्रम और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोता, अभी आप सुन पाएंगे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट तृष्णा चक्रवर्ती और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम जोयेस जया रोनियार है। मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मैं अभी BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे लिखना और नृत्य करना बेहद पसंद है। मेरे अब तक 4 किताब प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे ढेरों सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। मैं देश विदेश के ढेरों पत्रिकाओं में मेरे कविता को भी स्थान दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को जीने के लिए हमें इससे सीखते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। थैंक यू
0: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे कार्यक्रम में हम जानेंगे कि वुमेन के लिए हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। और इसी विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे हाफलोंग की ही डॉक्टर लीना हकमौसा जी हमारे साथ हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर लीना हकमौसा है। सब डिविजनल मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर यहाँ का हफलोंग का ही हूँ मैं। अर्बन हेल्थ सेंटर, जिसको टाउन ओपीडी बोल के भी जाना जाता है, उसको इंचार्ज हूँ एज ऑफ नाउ।
0: जी, वुमेन के लिए हेल्थ केयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है?
2: देखिए, लाइक वुमेन, जो नारी है वो समाज का बैकबोन माना जाता है।
0: जी।
2: तो वुमेन जो है वो एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा करेक्टर है जिसके पास शक्ति, बुद्धि, सुंदरता, ममता, पेशेंस यानी कि धैर्य क्षमता, कंपेशन यानी कि दया जो वो होता है, जिसको समाज को, परिवार और देश को सपोर्ट करना, नर्चर करना और लीड करने का कैपेसिटी होता है।
0: जी।
2: तो जो नारी परिवार को या समाज को और देश को, इकोनॉमिक्स को शेप देता है, इसलिए वुमेन को हेल्दी रहना बहुत जरूरी होता है। और भी अगर वुमेन को विस्तार में डिस्क्राइब करेगा कि नारी ठीक ही दुर्गा माता का रूप होता है। वुमेन लोग ऑफिस में काम करता, चाहे वो जो भी रैंक का हो, होने दो, घर में आएगा तो वही धोबी भी बनता है, कुक भी बनता है, बच्चा को माई भी बनता है, कोई का वाइफ भी बनता है एंड वो मेड भी बन जाना पड़ता है। जो खेती करता उन लोग को तो और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब वुमेन को हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिप्रोडक्टिव केयर, मैटरनल सर्विसेज एंड बीमार होने में ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है।
0: जी।
2: जिससे वुमेन को मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी कम होगा।
0: जी।
2: तो माइक्रो हेल्थ ठीक होने से ही बच्चा लोग हेल्दी रहेगा।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैम, अपने हेल्थ को कैसे केयर करें?
2: हेल्थ को केयर लेने से ही इश्यूज लाइक स्पेशली फॉर वुमेन, जहाँ मैं आजकल जो वुमेन को कैंसर कॉमन होता है, जैसे कि नंबर वन में वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन में है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आता है, उसके बाद आपको ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का सारा प्रॉब्लम्स उम्र एक होने से वुमेन को, ये सब बहुत जल्दी आइडेंटिफाई व डायग्नोस होने से, ट्रीटेबल स्टेज में आइडेंटिफाई होने से वी कैन, हम लोग उसको ट्रीट कर सकता है। तो हेल्थ को इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तो हम लोग हेल्थ केयर इस तरह कर सकता है, वो हम एक एक डिजीज को तो अब नहीं बताए के, जनरली क्या करने से वुमेन को हेल्थ ठीक रहेगा उसको हम बताएगा। तो एक

0: तो चाहिए नंबर वन रेगुलर हेल्थ चेकअप. वो हम लोग लाइक एनुअल फिजिकल चेकअप होता है जिसमें हम लोग आदमी को बदन में खून कमती है ना नहीं, एनीमिया को प्रॉब्लम्स ना, बा वेट ज़्यादा होने से जो बहुत कुछ सारा प्रॉब्लम्स होता है वो सब फिजिकल चेकअप में मालूम. रेगुलर चेकअप करने से क्या, करने से एनीमिया से बच के रहेगा. वेट कंट्रोल क्यों करना, वेट ज़्यादा होने से बीमार फैलने वाला को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकता है. उसके साथ साथ हम लोग रेगुलर चेकअप करने में बीपी, ब्लड प्रेशर, देन कोलेस्ट्रॉल, देन शुगर, ये सबको रेगुलरली चेकअप करना एक वीमेन के लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज अल्टीमेटली ये सब भी आपको बीमार दूसरा बीमार ले जाने में मदद करता है. हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हाई शुगर. तो एंड देन हम ज़्यादा इसमें स्ट्रेस करने मांगता स्पेशली फॉर वीमेन को, जो हम आगे में भी बोला. नंबर वन में वीमेन को कैंसर बोलने में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है. एंड आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया. जो हम लोग छोटा सा एक टेस्ट करके, जिसको हम लोग पेप्समियर बोलता है, वो टेस्ट करा के भी हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकता है. तो वो पेप्समियर कराना, देन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोल के एक किस्म का वायरस होता है जिससे हम लोग को सर्वाइकल कैंसर होता है, जो बच्चा पैदा करने वाला रास्ता को कैंसर, वो नंबर टू में आता है. वो बहुत कॉमन है आजकल. तो उसको भी स्क्रीनिंग कराना टाइम टू टाइम रेगुलरली. देन रिगार्डिंग ब्रेस्ट का अवेयरनेस, ब्रेस्ट में नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा होता है, एंड देन कुछ लंब मिलेगा, साइज में अलग आएगा, कुछ डिस्चार्ज होगा, वो सबको बारे में हम लोग को अवेयर होना चाहिए. सो वीमेन को ये सब साथ में आपको, आजकल हमारा यहाँ नहीं हुआ तो क्या दूसरा जगह में, दूसरा बेटर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजेस में मेमोग्राम्स होता है. ब्रेस्ट को एक किस्म को एक्सरे लिया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है. ये सब अगर राइट एज में हम लोग कराएगा तो हम लोग जो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है, ये हम लोग को सब सेंटर लेवल में भी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेवल में भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल स्क्रीनिंग का सुविधाएं बहुत है. तो एक वीमेन को जानकारी होना है कि बीमार होने से पहले एक जब उम्र आ जाएगा 40+, तब में ये सब चीज करवा लेना है. तो ये सब करके अपने आप को आप बीमार से बच के रह सकता है. साथ ही साथ आपको अगर बीमार हुआ भी तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा, तो ट्रीटेबल एज में आपको मालूम होगा जो भी बीमार होने दो ना. एंड नंबर टू हो गया, ये होगा रेगुलर चेकअप. एंड दो नंबर टू चेकअप में आता है रिप्रोडक्टिव केयर. थोड़ा तो 40+ को हम बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन लोग को शादीशुदा उम्र का औरत लोगों को कितना उम्र में शादी होना है, शादी हुआ तो कितना गैप रखना है
1: जी.
0: पहला बच्चा होने से पहले दो बच्चे में अंतर कितना रखना है, उसके लिए हम लोग उनको जो कॉन्ट्रासेप्शन को काउंसलिंग होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को, वो अगर हम लोग को गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है वहाँ अगर जाएगा तो वो सबको कॉन्ट्रासेप्शन को काउंसलिंग भी हो जाता है. तो खुद को मालूम हो जाएगा जो कब प्रेगनेंसी लेना है, अगर हुआ तो सेकंड प्रेगनेंसी में कितना गैप रखना है, क्यों गैप रखना है, वो अपने आप को हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये जरूरी है. अर्ली प्रेगनेंसी भी नहीं होना है, अगर हुआ तो दो बच्चा में अंतर कम से कम 3 साल को रखना है. ये सब आपको हमारा हॉस्पिटल में जाएगा, ये सबको काउंसलिंग हो जाता है. तो इसको बारे में भी जानने को बहुत जरूरी है. एंड देन इसको लिए अब लोग हम लोग को अभी कम्युनिटी लेवल में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, सब सेंट्रल लेवल में ANMs होता है, नर्सेस होता है, एंड हॉस्पिटल लेवल में डॉक्टर्स होता है. तो इन लोगों को पास में टाइम टू टाइम कंसल्ट करना है, जिससे रिगार्डिंग इवन मेंस्ट्रुअल साइकल्स एंड इवन मेनोपॉज मतलब हो गया आपको एक टाइम आता है, ये सबका समान नहीं होता लेकिन एक टाइम आता होता है जिसमें मेंस्ट्रुएशन तो बंद हो जाता है. तो वो मेंस्ट्रुएशन बंद होने से पहले एंड ड्यूरिंग बंद होने के बाद में भी एक वेमेन को बहुत सारा बदन में चेंजेस आता है, जिसको वजह से उनको बहुत दिक्कत होता है, इवन मेंटल स्ट्रेस तक भी हो जाते हैं. तो इन सबको कंसल्ट करना चाहिए. तो ये रिप्रोडक्टिव केयर में ये सब करना चाहिए अलॉन्ग विथ इट रेगुलर चेकअप एंड स्पेशली फॉर वेमेन. तो रिप्रोडक्टिव केयर ये सबको छोड़ के भी खुद को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा नहीं होने से कम ब्रिस्क वॉक तो लेना है 150 मिनट्स पर वीक, ऐसा उसको हिसाब से विद अदर एक्सरसाइजेस लाइक योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, एंड देन अदर स्ट्रेंथ को लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी कर सकता है. एंड बैलेंस मिल विथ प्रोटीन ना, लॉट्स ऑफ प्रोटीन.

0: ज्यादा होना है हम लोग को, खाना में फाइबर्स ज्यादा होना है, आयरन कंटेनिंग फूड्स खाना है ज्यादा,
1: जी
0: देन कैल्शियम, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, जो हम लोग को बदन के लिए स्पेशली फॉर वेमेन बहुत जरूरी है, ये वाला बैलेंस्ड मील खाना है। तो इनको लिए आपको टाइम टू टाइम हम लोग को हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में विजिट करके कम्युनिटी लेवल को वर्कर्स, ऑफिसर्स, इवन डॉक्टर्स को साथ में ये टॉक करना है, टाइम टू टाइम कंसल्ट करना है। सो अलॉन्ग विद इट देन अगेन कम्स, आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आपको, वर्क प्लेस में बोलो, इवन वर्क प्लेस में नहीं हो के घर में भी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है ना, इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि कम से कम वर्क प्लेस में हो, जहाँ में भी हो, एक वीमेन को 7 to 8 hours ऑफ स्लीप्स तो पर डे चाहिए। तो उसको हम लोग स्ट्रेस से तो बच के रहना ही है, वो सब बच के रहने के लिए मैंने जैसे बताया आगे वॉक ले लेना है, ब्रीदिंग को एक्सरसाइजेस करना है, मेडिटेशन करना है, ये सब में भी हम लोग को औरत लोग उनको स्पेशली वर्किंग वुमेन को ध्यान देना है। देन सोशल टाइज ज़्यादा रखना है हम लोग को, मतलब सोशली वी शुड बी वेरी एक्टिव, देन गुड फ्रेंड्स साथ में होना है, देन यू गेट लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है, यू कैन शेयर मैनी थिंग्स विद दैम, यू कैन शेयर योर डिजीज प्रॉब्लम्स, एनी थिंग, घर का प्रॉब्लम्स, हेल्थ का प्रॉब्लम्स, यू शेयर विद दैम, उनको पास से भी आप बहुत एडवाइस मिलेगा। तो ऐसा वाला बहुत कुछ हैबिट हम लोग उनको रखना है। तो और एक तो हो गया आपको हेल्थ रिलेटेड छोड़ के भी एक वीमेन को सेफ्टी नेट्स बनाना है, जैसे कि आपको टू डेट वैक्सीन लेना वेमेन को लिए भी बहुत वैक्सीन है, जैसे कि आपको अभी कोविड को टाइम गया तो कोविड को वैक्सीन निकला, तो आपको हेपेटाइटिस को वैक्सीन निकलता है, इवन अभी तो मैंने जो बताया सर्वाइकल कैंसर का वो जो वैक्सीन है वो भी यंगर वेमेन लोगों के लिए तो वो भी है, तो वो अप टू डेट वैक्सीन खुद को जानकारी रहना है एंड लेना भी है। देन फैमिली हिस्ट्री में कितना टू बीमार हम लोग उनको फैमिली से भी रन करता है, हेरेडिटरी जो जिसको बोलता, अगर कोई को फैमिली में हाइपरटेंशन को प्रॉब्लम है, माई बाबा को हाइपरटेंशन था या नाना नानी को था, बा डायबिटीज़ था, बा कैंसर, वो फैमिली में रन करता है, तो इसको बारे में भी अच्छा से जानकारी एक वीमेन को रहना है, सो दैट वो जब भी जरूरी है डॉक्टर को पास में कंसल्ट करके ये सब बताना। मेरा ख्याल से ये सब को अगर हम लोग अच्छा से ध्यान रखेगा, मैंने जितना भी बताया, टू सम एक्सटेंट वेमेन लोग हेल्दी रहेगा। दैट्स व्हाई इन लोगों को ये हेल्थ केयर लेना भी इम्पोर्टेंट है।
1: जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। मैम, वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है?
0: फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना वेरी क्रिटिकल फॉर अ वेमेन, जैसे कि स्पेशली फॉर सिक्योरिटी ना, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इमरजेंसी में अगर आपके पास खुद का अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब इमरजेंसीज में यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ना, एंड देन आपको मेडिकल क्राइसिस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज में अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होगा तो इसमें बहुत सिक्योर होगा। देन खुद को संभालने को लिए ना इक्वेलिटी, देन खुद को पर्सनल लाइफ अपना चॉइस के मुताबिक जीने के लिए, ये सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से इस सब में हम लोग उनको बहुत फायदा होगा। देन फाइनेंशियली अगर हम लोग इंडिपेंडेंट होता है तो हम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने को हम लोग सकेगा, और वेल्थ इन द सेंस हम लोग सेविंग्स कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, प्लान कर सकता है, आप जब बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट होगा, तो दूसरा को पास में हाथ फैलाने नहीं लगेगा ना, लेटर लाइफ में आप जैसा मांगता ऐसा माफी दूसरा को पर में डिपेंडेंट नहीं होके जीने को लिए आप सकेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा कमाया उड़ाई दिया वो नहीं होगा, पैसा कमाएगा सेविंग्स, इन्वेस्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक वीमेन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा तो खुद का फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है दूसरा को पर में, रिगार्डिंग आर करियर ना, रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड और खुद का भी ना, एंड अपना लाइफस्टाइल। फाइनेंशियली यदि हम लोग इंडिपेंडेंट होगा तो ये सब में भी हम लोग ध्यान दे सकता है, अपना लाइफस्टाइल कैसा जीना है जिएगा, खुद को कैसा पसंद है वो रहेगा, वो कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई को ऊपर में डिपेंड करना लगेगा, कोई को ऊपर में फाइनेंशियली डिपेंड करना है, तो इसको तो यू हैव टू थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स ना, बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होने से यू कैन लीव अ हैप्पियर बेटर लाइफ। अपना तरीके से जीने को हम लोग सकेगा. सो अल्टीमेटली इट विल इम्प्रूव द एंटायर हेल्थ.
1: जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है. और हम जानना चाहेंगे कि आपके इस बिजी शेड्यूल में आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, आपकी हॉबी क्या है?
0: मेरा हॉबी है सच

0: सब चीज़ में हम फुल टाइम दे नहीं सकता, फिर भी मेरा कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कुकिंग अच्छा लगता है। हमारा अपना डिमासा ट्रेडिशनल क्विजिन्स हम अच्छा लगता है, हम बनाता है। एंड बाकी में भी लाइक चाइनीज़ फूड या इंडियन फूड भी थोड़ा बहुत बना लेता है और टेस्टी ही होता है। एंड देन अदर देन दैट हमको गार्डनिंग पसंद है,
1: जी
0: गार्डनिंग में हम फूल सब्जी ये सब, अब इवन फॉल का गच्छी ये सब लगाता है हम। एवरी ईयर आई प्लांट एटलीस्ट 3 to 4 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, देन सब्जी एंड फूल तो थ्रू आउट द ईयर मेरा रहता है,
1: जी
0: हम ये सब पसंद है। एंड थोड़ा बहुत हम अपना जो ट्रेडिशनल कपड़ा वो बनाने में भी आई एम इंटरेस्टेड। हम कुछ भी नहीं होता, हम कम से कम एक साल में एक कपड़ा तो खुद के लिए बनाता है।
1: हाँ, ये बहुत ही प्यारी बात कही है आपने। मैम, आप इतना बिजी रहती हैं, आप सब कुछ बैलेंस कैसे करती हैं?
0: एवरीथिंग इज अपना को ऊपर में है, आप अपना को कैसे ले जाने मांगता है, आपका पास अगर विल पावर है तो सब कुछ होता है। थोड़ा एकदम परफेक्ट नहीं होने से भी थोड़ा बहुत परफेक्ट हम लोग कर सकता है। मेरा तो नौकरी करने वाला है, दैट टू बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, टाइम तो बहुत कंस्ट्रेंट्स होता है हमारा, ना छुट्टी होता है ना संडेज होता है,
1: जी
0: एनी टाइम हम लोग को प्रोग्राम्स ही प्रोग्राम्स रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम पेशेंट्स भी देखता है।
1: जी बिल्कुल
0: अभी तो थोड़ा कमती हो गया बिकॉज मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन में भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, प्लस मेरा अंडर में बहुत सारा पॉपुलेशन है जिसको जिसमें हमको हेल्थ को जितना प्रोग्राम्स है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इसको वजह से हमारा थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत आता है। फिर भी समय तो खुद से निकालना पड़ता है, वो समय हमको हमारा लिए अलग से नहीं आएगा, हमको ही वही में से हमको समय निकाल के हमको खुद को प्लानिंग करना है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो टोटली जैसे मैंने बोला टोटली अपना ऊपर में ही डिपेंड करता है। टाइम डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करना है मेरे हिसाब से। कल क्या करेंगे हम वो रात को सोच लेता है, ऑफिस में जाके हमको ये करना है, आई नोट इट डाउन, तो एट द एंड ऑफ द डे हम देख लेता है वेदर आई कुड कंप्लीट ऑल और नॉट। जो रह गया जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लिए पीछे में करने से भी होगा वैसा वाला हम थोड़ा साइडलाइन करता है, लेकिन जिसको जरूरत है वो हम नोट डाउन करके हम एट द एंड ऑफ द डे सब काम हो गया ना नहीं हुआ वो देख लेता है। हम ऐसे करके ऑफिस को काम को हम निभाता है। देन घर का काम में भी आप सुबह जल्दी उठेगा तो ये तो काम होगा, इसलिए सुबह उठना हमको जल्दी उठना पसंद है। तो
1: जी
0: सुबह में उठ के अपना जो काम करना है एंड देन जितना भी हो हमारा पाकघर को तो हम खुद देखता है, इसलिए पाकघर का काम खत्म करके खुद को ऊपर थोड़ा टाइम देके हम ऑफिस टाइम एटलीस्ट बाय 9:30-10 हम ऑफिस में पहुंच जाता है। तो बाय द टाइम आई कम बैक अगेन इज 4:30 to 5 ऐसा हो जाता है। तो जो भी चीज़ मेरा ख्याल में टाइम को डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर करेगा और साथ में थोड़ा प्लानिंग होना चाहिए।
1: जी
0: हाँ
1: जी आपने बहुत ही अच्छा एक हम लोगों के लिए रूटीन फॉलो करने के लिए बात कही है। मैम, आप सभी चीज़ों में कोई आपका एक मेमोरी या चाइल्डहुड मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ?
0: तो मेरा
1: जी
0: जो चाइल्डहुड था वो तो बहुत लाइक नॉस्टैल्जिक सॉर्ट ऑफ थिंग है, लेकिन क्योंकि हमारा जो हफलोंग है वही पहले को अभी तो तभी को वाला नहीं रहा, तो उसमें हम लोग को चाइल्डहुड वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बच्चा लोग जो अभी को चाइल्डहुड फेस कर रहा है ना वो चल रहा है उससे तो टोटली डिफरेंट है। हम लोग को चाइल्डहुड शुरू हुआ है अब को नेचर को साथ में, उस टाइम में ना गाड़ी था हम लोग पैदल, देन उस में लाइक वेदर वाज वेरी गुड, वेदर उसमें पोल्यूशन नहीं था ठंडा था, ऐसा करके गुजरा है। इसलिए लाइक एवरी पार्ट इज माय मेमोरी, माय नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वो थोड़ा शेयर करने मांगता जिसको आई नेवर फॉरगेट। वो है हम जब 1986 में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने गया तो उसमें भी बहुत कहीं नहीं है, फिर भी इट वाज सो इजी फॉर अस टू गेट अ मतलब वहाँ पहुँचना। हमको कुछ एम भी नहीं था डॉक्टर बनने को, फिर भी मेरा रिलेटिव्स कोई था, मेरा कजिन सिस्टर था, उसने हमको बाज़ार में मिला तो बोला कि तुम एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो हम फॉर्म भेजता है तुम मेडिकल में आ जाओ। तो मैंने तो भी रियलाइज़ किया हाँ ये भी तो कोर्स एक है, तो रियलाइज़ किया तो क्योंकि वो ज़माना अलग ज़माना था
1: जी
0: एंड ऐसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली का है तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, एंड तो फैमिली में कोई डॉक्टर भी नहीं था अपना खुद का फैमिली में, तो सेकंड कज़िन सिस्टर ने बोला ऐसा, तो मैंने बोला ठीक है, तो वो भेज दिया फॉर्म फिलअप कर दिया बस मिल गया ऐसा कुछ था।
1: जी
0: एंड मिल गया, मिलने के बाद तो हॉस्टल में बैठा तो लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट दैट टाइम। हमको गुवाहाटी में पढ़ने वाला भी बहुत कम था स्पेशली फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा हाई
1: जी
0: क्लास को वाला लोग तो उन लोग का लाइफ अलग है, तो मिडिल क्लास फैमिली से आना जाना करने वाला भी बहुत कम था, आना हमारा दिमाग का ट्रांसपोर्टेशन कम रोड कनेक्टिविटी

वॉज वेरी बैड दैट टाइम. मतलब अपना पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन में हम लोग ट्रेन से आया जाया करते थे, मतलब हाफलोंग से. तो तब हमको जितना जानकारी है तब खाली बोराक वैली एक्सप्रेस अप एंड डाउन, यहाँ इधर आने वाला डाउन, ऊपर जाने वाला मतलब जाने वाला टू अप, एंड एक कछार एक्सप्रेस था. तो यूजुअली बोराक वैली एक्सप्रेस शाम को यहाँ से छोड़ता लाइक 4:35 एंड वहाँ भी ऐसे 5:36 समटाइम 7 पहुँच जाता सुबह को नेक्स्ट डे. तो यूजुअली हम बोराक वैली से आना जाना करता था. लेकिन एंड मेरा एक दोस्त भी था जो मेरा साथ पढ़ाई करते थे, तो उनको साथ हम लोग आया जाया करते थे. तो एक दिन क्या हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम था तो वो आ नहीं पाया, नहीं सका आने को. तो हमको खुद को अकेला आना था. तो मैंने मेरा दूसरा दोस्त लोग उनको बोला चलो हमको ट्रेन स्टेशन तक ड्रॉप करो. तब गुवाहाटी में भी ऑटो ही था और बाकी कुछ नहीं था. हम लोग इवन रिक्शा में आया जाया करते थे फ्रॉम पल्टन बाज़ार टू भांगागर ऐसा. तो हम लोग ऑटो में आया, वो पहुँचाया वो. एंड ऐसे भी हम मिडिल क्लास फैमिली का है तो ऐसा सोच भी नहीं सकता. तो फैमिली में कोई डॉक्टर भी नहीं था, अपना खुद का फैमिली में. तो सेकंड कज़िन सिस्टर ने बोला ऐसा, तो मैंने बोला ठीक है. तो वो भेज दिया, फॉर्म फिलअप कर दिया, बस हम मिल गया ऐसा कुछ था. एंड मिल गया, मिलने के बाद तो हॉस्टल में बैठा. तो लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट दैट टाइम. हमको गुवाहाटी में पढ़ने वाला भी बहुत कम था, स्पेशली फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली. थोड़ा हाई क्लास को वाला लोग तो उन लोग का लाइफ अलग है. तो मिडिल क्लास फैमिली से आना जाना करने वाला भी बहुत कम था. आना हमारा दिमाग का ट्रांसपोर्टेशन रूट कनेक्टिविटी वॉज वेरी बैड दैट टाइम. मतलब अपना पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन में हम लोग ट्रेन से आया जाया करते थे, मतलब हाफलोंग से. तो तब हमको जितना जानकारी है तब खाली बोराक वैली एक्सप्रेस अप एंड डाउन, यहाँ इधर आने वाला डाउन, ऊपर जाने मतलब जाने वाला टू अप, एंड एक कछार एक्सप्रेस था. तो यूजुअली बोराक वैली एक्सप्रेस शाम को यहाँ से छोड़ता लाइक 4:35 एंड वहाँ भी ऐसे 5:36 समटाइम 7 पहुँच जाता सुबह को नेक्स्ट डे. तो यूजुअली हम बोराक वैली से आना जाना करता था. लेकिन एंड मेरा एक दोस्त भी था जो मेरा साथ पढ़ाई करते थे, तो उनको साथ हम लोग आया जाया करते थे. तो एक दिन क्या हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम था तो वो आ नहीं पाया, नहीं सका आने को. तो हमको खुद को अकेला आना था. तो मैंने मेरा दूसरा दोस्त लोग उनको बोला चलो हमको ट्रेन स्टेशन तक ड्रॉप करो. तब गुवाहाटी में भी ऑटो ही था और बाकी कुछ नहीं था. हम लोग इवन रिक्शा में आया जाया करते थे फ्रॉम पल्टन बाज़ार टू भांगागर ऐसा. तो हम लोग ऑटो में आया, वो पहुँचाया. वो एक्चुअली हम लोग को लिए सुविधा था बोराक वैली, लेकिन उस दिन हमारा अकेला आना है ना. बोराक वैली उधर से स्टार्ट करता है रात को 11:30. तो दोस्त होने में 11:30 में आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दोस्त नहीं था, मेरा दोस्त जब नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरा दोस्त को रिक्वेस्ट करके इन लोग आया मेरे साथ ड्रॉप करने के लिए. ट्रेन तक भी उठा दिया एंड देन दैट वॉज कछार एक्सप्रेस. तो कछार एक्सप्रेस 11:30-12 दिन को स्टार्ट होता है. तो यहाँ आके 3:30 में पहुंचता है हाफलोंग रेलवे स्टेशन में, लोअर हाफलोंग में. तो तब का जमाना तो लाइक बोलने से तो इट्स अ नाइटमेयर. हम लोग को ना कनेक्टिविटी, ना मोबाइल है, ना फोन है, कुछ नहीं था. हम लोग अगर फोन में कनेक्टिविटी करना है तो आपको पान बाजार आके ट्रंक कॉल करके, ट्रंक बुकिंग करके हम लोग घर को कांटेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पोस्ट ऑफिस लेटर. तो लेटर आते पहुंचते में इट यूज टू टेक 1 मंथ. इसलिए हम लोग ट्रंक बुकिंग करके पल्टन बाजार में आके, पान बाजार में आके ट्रंक बुकिंग करके घर में फोन किया करते थे. तो इतना तो सब समय पॉसिबल नहीं है ना, पैसा भी तो हम लोग ज्यादा नहीं मिलता. संभव हम ट्रंक बुकिंग करके खबर दे दिया जो हम इतना तारीख में कछार एक्सप्रेस से आ रहा है. तो मेरा बड़ा भाई था, बड़ा भाई हमको स्टेशन में लेने के लिए आएगा ऐसा कुछ था. उसके बाद तो कनेक्शन नहीं है. द डेट पहुंचा तो मैंने ट्रेन में उठा, बस आ गया. तो आते आते आते मेरा नींद लग गया. आई डोंट नो कहाँ में मेरा नींद लग गया, मैंने हमारा तो नींद हो गया. एंड वहाँ में जो ना ट्रेन में हाफलोंग को कोई भी आदमी जान पहचान हम नहीं देखा, क्योंकि वी हार्डली फाइंड एनीबडी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन. आदमी ट्रेवल ही नहीं करता ऐसा था. आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, लेटर पार्ट ऑफ 80s, 86-87 का बात कर रहे हूँ, 1986-87. तो हम क्या क्या उठा आया, हमको कहाँ में, शायद वो समवेयर लामडिंग में बहुत देरी रुकता है. तो लामडिंग पहुँचने के बाद इन लोग, मेरा नींद लग गया. लामडिंग में तो रात हो गया, तो लामडिंग में हमारा नींद लग गया, तो नींद सो गया. आते आते जब हम जागा तो इट वॉज ऑल डार्क. ट्रेन भी डार्क था, करंट नहीं था. एंड जंगल में और कहाँ करंट होगा ना, रेलवे ट्रैक में तो कुछ करंट नहीं, ट्रेन को अंदर में भी करंट नहीं था. तो हमको गोरी भी दिखाई नहीं दिया, कितना बज गया, कहाँ पहुँचा, हमको कुछ मालूम नहीं. एंड वहाँ में जो कोई को पूछेगा, लाइक एवरी वन वॉज फुल, मैंने स्लिप
तुमको पूछने को भी कोई को नहीं मिला।

0: आई डोंट नो एनीबडी ना, एंड मैक्सिमम मेल्स होता है उसमें ट्रेन में, फीमेल्स हार्डली होता है. तो हमको तो मालूम है, अभी मेरा तो जान पूरा चला गया, तो जो भी थोड़ा हम बैठा, बैठ के मैंने सोचा हम तो जरूर हफलोंग तो क्रॉस कर लिया होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, सिलचर तक तो ये गाड़ी तो जाता है, तो सिलचर तक हम पहुंचेगा तो नेक्स्ट डे देखा जाएगा, मैंने ऐसा सोच लिया. और इतना डर से हम आया आए के सिलचर, क्योंकि गाड़ी को हम लोग को इतना हैबिट नहीं है ना, हफलोंग तक संभव पहुंचेगा उधर, तो उसके बगैर तो हम गए ही नहीं कभी भी उधर, तो हमको मालूम नहीं. बाद में जब बहुत देर बैठा बैठा बैठा बैठा तो हमको थोड़ा सा लाइट दिखाई दिया, लाइट मतलब जो केरोसिन से लैम्प जलता ना, हाँ क्या बोलता है उसको, केरोसिन से जलाने वाला दिया को जैसा, ऐसा कुछ दिखाई दिया दूर में, बहुत खुशी हुआ. हाँ देन फाइनली वहाँ में ट्रेन स्टॉप भी किया, तो मालूम किया कि वो माईबंग स्टेशन था.
1: जी
0: माईबंग स्टेशन था. आदमी लोग थोड़ा कोई नामने वाला नामा स्टेशन में भी चाना मोटर वो आया, माईबंग स्टेशन संभव हमको दिखाई दिया. करंट नहीं था लेकिन संभव पर्टिकुलर वो दिन में करंट नहीं था, मे बी दूसरा दिन तो होता है, लेकिन उस दिन तो मे बी वेदर खराब था कुछ भी, ना ट्रेन में करंट है ना स्टेशन में करंट है. तो हमको मालूम हुआ संभव कि वो माईबंग स्टेशन, देन ओनली आई गॉट अ साई ऑफ रिलीफ ना. तो उधर से बैठ के हम आके हम लोअर हफलोंग स्टेशन में 3:30 में पहुंचा. तो वहाँ एक दो नामा, तो उन लोग को साथ में हम भी नाम के, लकीली माई ब्रदर वॉज देयर, सो हम आया. बट वो दिन ना वो रात वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, एंड हम जिसको भी मिलता हम ये बोलता है, इवन टू माई चिल्ड्रेन ऑल्सो आई ऑलवेज बोलता है, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. ऐसा करके हम लोग पढ़ाई करके अभी इतना तक पहुँचा है.
1: जी आपका लाइफस्टाइल कैसा है?
0: हम हेल्दी खाना पसंद करता है, लाइक लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फाइबर्स, देन फ्रूट्स. हम होम ग्रोन ऑर्गेनिक फूड ही खाता है, खाली सीजनल कितना ठू सब्जी ना ये खाता है. देन लेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑयल. हम क्योंकि हम डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेता है, ऑयल्स भी हम पूरा लिमिट में खाता है, पानी ज़्यादा पीता है, ये तो हम मानेगा. फास्ट फूड वो हमको पसंद नहीं है, हम बहुत कम खाता है, आई अवॉइड ऑल दोज थिंग्स. देन हम ब्रिस्क वॉक लेता है सुबह को डेली, प्लीज़ जितना हो सके 5 days इन अ वीक हम लेता है, 1 to 1.5 hours का ब्रिस्क वॉक लेती हूँ. तो ये हमको आई फील दैट हमारा शुगर कंट्रोल करने में भी एंड अपना खुद को वेट मेंटेन करने में भी ये मदद करता है. पहले हम बहुत मोटा हुआ करते थे, अभी हम बहुत कम गया वेट, आई कुड लूज 15 kgs इन अ ईयर. सो हम अभी उसमें ध्यान देता है, एंड उसको छोड़ के हम घर का सब काम छोटा मोटा कर लेता है, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कोशिश करता है.
1: वही है जो श्रोता है आज आपको सुन रहे, सभी के लिए आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा?
0: हमारा मैसेज टू द पब्लिक ये रहेगा, स्पेशली टू द वेमेन ये रहेगा, नॉट ओनली टू द वेमेन इवन मेल ऑल्सो, ईट हेल्दी, बी फिजिकली एक्टिव, अपने आप को रेगुलर डॉक्टर को पास में हेल्थ चेकअप किया करे, उसको साथ में एटलीस्ट आप लोग बीपी शुगर ये तो चेक कराना है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ में देखा गया है हाई बीपी एंड डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया, इवन 30 बिलो 30 वाला भी स्ट्रोक, हाई प्रेशर को वजह से स्ट्रोक होके मरने वाला संख्या भी अभी बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आपको एटलीस्ट बीपी शुगर को रेगुलर चेकअप कराना है. एंड वीमेन स्पेशली खुद को ब्यूटी को ऊपर में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, से आपको हेयर केयर, स्किन केयर, एजिंग को ऊपर में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. यही मैसेज रहेगा टू द वीमेन ऑफ डिमासा. थैंक यू.
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आशा करते हैं आज जितने भी श्रोता है आज आपको सुन रहे हैं उनको काफी अच्छा लगा होगा. आपने हमारे साथ जुड़े रहकर इतनी सारी बातें की और बहुत ही अच्छा लगा हमें. आप हमेशा स्वस्थ रहे और ऐसे ही खुश रहे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
1: जी आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा. सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार. तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम. ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है. अब से कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है. श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत

0: इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनूर गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूर में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों और अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। वे आज रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रिजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को फिर दोहराया है। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया है। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। भारत आज कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 300 रन पर 5 विकेट के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल शाम स्टंप्स तक ध्रुव जुरेल और सारांश जैन नाबाद रहे। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरा टेस्ट शतक लगाया। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले नीदरलैंड्स ने चीन को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
3: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछे

0: देखेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। इन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग इन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दें, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दें।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
2: सुंदर दिन सुबह हुई, सुनहरा सवेरा खिल उठा जग सारा न्यारा, नीले अंबर उजली धूप, महकी धरती खिले है फूल, चिड़िया गाए मधुर तराने, तितली नाचे रंग सुहाने, ठंडी हवा मुस्कुराती जाए, हरियाली मन को लुभाए, कल कल करती बहती धारा, प्रकृति का है रूप निराला, खुशियों से भर जाए मन, कितना सुंदर है आज का दिन।

ये कविता कहा है वर्षा घोष ने, जो असम यूनिवर्सिटी सिलचर में एमएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ती है। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज का दिन। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं आज के दिन के इतिहास की विशेषताओं के बारे में। इसके पश्चात हम जानेंगे उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। साथ ही उन विशेष व्यक्तियों के नाम हम जानेंगे जिनका निधन आज के दिन हुआ था।

श्रोतो, सबसे पहले जानते हैं आज के दिन के इतिहास की विशेषताओं के बारे में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा। आज के दिन 1690 में जॉब चार्नॉक ने कोलकाता शहर का स्थापना किया। 1951 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए 1995 में शुरुआत। अब जानते हैं विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जन्म 1927 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता अंजलि देवी का आज के दिन 1927 में जन्म। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत का राजा वासवराज राजगुरु जी का जन्म 1917 में हुआ था। भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक बीना दास का जन्म 1911 में हुआ था।

स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु जी का आज के दिन 1908 में जन्म। केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के केलाप्पन का 1889 में आज के दिन जन्म। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर खेर का 1888 में जन्म। आज के दिन 1872 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का जन्म।

अब जानते हैं उन विशेष व्यक्तियों के नाम जिनका निधन आज के दिन हुआ था। आज के दिन 2019 में भारत सरकार के भूतपूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अरुण जेटली का निधन। बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल ए.आर. किडवाई का 2016 में आज के दिन निधन। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का निधन 2000 में हुआ। 1993 में आज के दिन डीबी देवधर, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनके नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी खेला जाता था, उनका निधन। भारतीय साहित्यकार तमिलनाडु के वेंकट रामा रमलिंगम पिलाई का 1972 में निधन। श्रोताओ, ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातें। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आइए आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। और सबसे पहले आप सुन पाएंगे उद्भव मनोहर शेट्टी, ईशान और श्वेता पंडित के आवाज़ में।

0: सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना, उन्हें नई नई बातें सिखाना और उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना बहुत पसंद है। जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं और खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। आज मैं सभी महिलाओं से भी यही कहना चाहूँगी कि हर महिला के अंदर अनेक प्रतिभाएं और शक्ति होती है। हमें हमेशा अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धन्यवाद।
1: आज मेरी बात प्रस्तुत किया है तर्षा नंदी ने। वे सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, मनोरंजन के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए फिर से आनंद लेते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। और अभी आप सबसे पहले सुन पाएंगे सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

दोस्तों आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार प्रभात।

हाथ के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव

0: मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया

0: साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में पांचवें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 पीएम। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। एसएमएस या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ
2: मेघालय टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन कॉल ऑफ देयर डिसीजन टू स्टॉप फ्लाइंग टू असम एंड बार एंट्री ऑफ असम टूरिस्ट व्हीकल्स। मणिपुर चीफ मिनिस्टर वाई के एम चांद सिंह होल्ड्स डिस्कशन विद असम राइफल्स ऑफिशियल्स ऑन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। Heavy overnight rainfall in Tripura triggers flood-like situation across several areas of Agartala. The news in details. Tourist taxi associations in Meghalaya have deferred their decision to stop flying to Assam and to bar entry of Assam tourist vehicles to the state. Their decision to call off the blockade came after a meeting chaired by Meghalaya Deputy Chief Minister Snobhalang Thar in Shillong yesterday. Thar has assured to convene another meeting within September 10th to discuss various

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए।

भूख लगी जोरों की भूख।

मोहित चौहान की इस गीत के साथ आज हमारा शुरू की रंगोली कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बातोरी।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम, जिसमें आप सुन सकते हैं खेलमा भक्ति गीत। गायक कलाकार है फुनसियम थे नेबॉम और उनके साथी।

आप सुन रहे थे खिलमा भक्ति गीत फुन सेम थे नेबॉम और उनके साथियों की आवाज़ में। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब पेशर आंखोल कार्यक्रम, इसके तहत आप सुन पाएंगे कुछ आधुनिक गीत जिसमें गायक कलाकार हैं हाइथोईलाल रांखोल और उनके साथी।

मलंग मलंग प्रिंगे और उनके साथियों की गाए भक्ति गीतों के साथ ही आज का जयंतिया कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं बीते कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे कुछ बीते भक्ति गीत। आवाज होंगे ललबियक संगीत थ्यांगी और उनके साथी।

आप आनंद ले रहे थे कुछ बेहतरीन भक्ति गीतों का। गायक कलाकार थे लल ब्यक्संगी थ्यांगलाई और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। और इसी के साथ ही मुझे यानी सुवर्णा को दीजिए इजाजत। अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ,
2: सब के खिलाफ
1: विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, जो वो होती है जिद।
1: वाह वाह।
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात।
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था।

0: छूटा नहीं।
1: जी जी।
0: पर मुझे तो वहीं जाना था, तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है, तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था, तो मैं इतना सा छोटा नाटा था, तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूं। और आप जवाबदेह है, उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
0: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था, और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई माने नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां के शुरुआती दिन कैसे थे?
0: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
0: तो NSD में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, 1+1 का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा 1-1 एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी,
0: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
0: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि NSD किधर है,
1: वाह,
0: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है NSD सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के, लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये NSD है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्र संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको, तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और रोब जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे का स्वागत आगत, तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
1: ओ हो घोड़े को जलेबी
0: खिलाने आगे चल के मेरी क्लासमेट जो PN हक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग
0: नहीं, नहीं वो नहीं बता उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
0: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं?
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई आमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर

0: तराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
1: वाह वाह वाह।
0: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
1: क्या बात,
0: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ये आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में, 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की, क्या कहते हैं, एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
1: जी,
0: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
1: वाह
0: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड के ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आई, तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया। तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था। आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता उस समय, एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं। फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के, जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग, उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे, जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर, थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का

0: नाटक कर रहा है। कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, तीन साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह।
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहाँ पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो।
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर
1: अच्छा।
0: ब्रुक कौन है मालूम थे। तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे। तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल।
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्ट्री कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्ट्री क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहाँ मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद।
1: जी।
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहाँ रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो। पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है।
1: वाह वाह।
0: पचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर्द।

सरकस है और सरकस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है घोड़ा जो पैसा है घोड़ा जो किस्मत है तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है। अभी सीनियर बैच में देखिए, आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिजमोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है,
0: वाह,
1: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में।

0: गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है, तो ये सारे भी अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है, नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, एक प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। नीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपने तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
1: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
0: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
1: जी,
0: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ तीन साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो दो या तीन ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, किसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप झुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंज वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची आधा मराठी में
1: जी,
0: या मुहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां 2 फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो

0: करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा,
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे। एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं
1: एक्स्ट्रा
0: है,
1: थे।
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया।
1: बहुत इंटेंस नाटक
0: है। और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा। और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के। वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक्ट को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल्ट ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वांट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करी है। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है। तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह,
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर। और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली। और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली ले लिया, आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
0: चेंज की। मतलब 2-3 चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस,
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है, वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे। केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने दो चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपरेटरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते,
1: अलग दोनों भी, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपरेटरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्ट्री के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट
0: एंड
1: नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब।
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहाँ जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
0: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
1: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भला ही होगा किसी या एक या 2 डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा बावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
0: बापरे,
1: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
0: गजब।
1: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में, तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको

0: ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था,
1: जी
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
1: हाँ
0: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया,
1: जी
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है,
1: हाँ
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम,
1: अच्छा
0: दैवम मतलब देव,
1: जी
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है,
1: जी जी जी
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम, तैयम का मतलब है देव,
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है,
1: क्या अनुभूति है, वाह
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि
0: कि
1: कौन है।
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है, उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है, उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा है वो,
1: इतना ऊंचा है और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है, वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है। तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम, और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
0: अरे बाप,
1: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं, वो भगवान को देखने आए,
0: आस्था है,
1: आस्था है उसके पीछे, इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
0: जी।
1: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
0: अच्छा,
1: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
0: वाह,
1: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
0: जी, जी, जी।
1: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
0: जी।
1: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है, ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है, एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर,
0: एक संगम हो रहा है।
1: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व थिंग
0: जी।
1: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया, या नाच में किया, सब हो गया, उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं, हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरह

0: तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों

0: रंग तरंग
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। 100 बार कहा आंखों ने यही अफसाना, दिल जाने तमन्ना आपका है दीवाना। श्रोताओं, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गैर फिल्मी गीत के साथ। आवाजें हैं पीनाज मसानी और भूपेंद्र सिंह की, गीत है नक्श लायल पुरी का, संगीत है जयदेव का, एल्बम का नाम है आई तेरी याद।

अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। कलाम है शायर डॉक्टर राही मासूम रज़ा का, आवाज़ें हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आशा भोसले की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम जेलानी का कलाम। मौसीकी तरतीब दी है गुलाम अली ने। एल्बम का नाम है मीराज-ए-गज़ल।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने

0: नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम रंग तरंग की अगली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में सुनिए। गीतकार हैं विशाल ददलानी, संगीत है विशाल शेखर का और एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

Rantaran. विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अलीशा चिनॉय की आवाज में नितिन रायकवार का लिखा गैर फिल्मी पॉप गीत सुनिए। इसे सुरों में ढाला है संदीप चौटा ने।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है ललित सेन का, एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

लीजिए सुनिए एक गैर फिल्मी गीत अमिताभ बच्चन और अदनान समी की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अदनान समी। एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है दिलीप वर्मन का, एल्बम का नाम है रात।

कार्यक्रम रंग तरंग की अगली और अंतिम पेशकश है तलत अजीज की आवाज में। शायर हैं इब्राहिम अश्क, धुन है फिदा हुसैन की।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: पी राधा कृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरी जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और

0: सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओ, आइए एक बार फिर से सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
3: और आप मिलकर याद करेंगे कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बैराग।

साथियों, अगला सदाबहार गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं इंदीवर, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथियों, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा अगला नगमा है मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म का नाम है सफर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने, फिल्म का नाम है कोरा कागज।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कलाकार, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

धर्मात्मा। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

0: पत्तियाँ।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है।

0: मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए एक बार फिर से सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो. जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है. और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब ही तो ज़िंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है. सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है. हमें कभी कभी लगता है सवाल यानी मृत तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टि भ्रम है. सवाल ही तो जिज्ञासा या मनुष्य की चेतना बढ़ाता है. जवाब यानी अनुभूति उस पर गहरी शांति देकर सवाल को जीत लेता है. जीवन का सफर यूं ही चलता रहे, यही रूह का असली बहाव है. और एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता. एक गाना भी है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब. इस तरह के एक गाने का इन्होंने जिक्र किया है. और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज की इबारत ने हमारा दिल

लिया। सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर हम भी कहते हैं कि दिल की बाजी है, जीत ही लेंगे। चलिए धन्यवाद आपका, हम आगे बढ़ रहे हैं। बहू बेगम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं। लता जी की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है, संगीत किसका है ये बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती है। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतज़ार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाज़ें हेमंत कुमार की, कैफी आज़मी।

बोल, संगीत हेमंत कुमार का, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज है वो आपको बड़ा पसंद आता है, और वो जवाब अंदाज जो है वो कैसा है उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइएगा। चलिए अनुपमा फिल्म का गाना सुनिए।

ये गाना एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आंखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा, ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो। तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपनी उत्सुकता या नियंत्रण के चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर कोई आपके सवाल के लिए तैयार बैठा हो। और एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब की इस पहेली ने मुझे मेरी बेटी की याद आई। अभी वह 2 साल की है और 15 अगस्त को उसका बर्थडे था। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती है कि इसका जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं, कभी कभी जवाब दे भी पाता हूँ। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, मेरे पापा रात को सोए और सुबह जागे ही नहीं। ये सवाल हम पूछते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। शिकारी फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार और संगीतकार का नाम आपको बताना है और अजीत और रागिनी पर फिल्माया गया ये गाना।

साथी लिख रही हैं कि सवालों की धुंध से ही तो जवाबों का सूरज उगता है, लेकिन हर रोशनी अपने पीछे एक नया साया छोड़ जाती है। हम जीवन भर जवाबों की तलाश में भटकते हैं, पर हर मिला हुआ जवाब एक नया प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब समय हमसे पूछता है कि तुमने क्या पाया और क्या खोया, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हिसाब कर्मों का दे या भावनाओं का। मैंने एक दिन बहती नदी से पूछा, तुम थकती क्यों नहीं? उसने पलटकर मुझसे ही पूछ लिया, तुम रुकते क्यों नहीं? पहचान क्या है तुम्हारी, एक बहती हुई लहर या किनारे पर बैठा कोई अजनबी? प्रश्नों का ये भंवर थमता ही नहीं है। एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ सवाल का जवाब मिल जाए, ये हर सवाल का जवाब मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे गणित के अध्यापक जो थे वो बहुत अच्छे से प्रश्न पूछते थे और उत्तर भी बहुत अच्छे से देते हैं, कमज़ोर छात्र छात्राओं को भी गणित बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। एक साथी लिख रहे हैं कि कॉलेज लाइफ में एक लड़की हमें मन को भा गई थी, उसे अंतर्देशीय पत्र भेजकर शादी के लिए लिखा था, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। बुढ़ापे में मुलाकात हुई तो मैंने शिकायत करते हुए अंतर्देशीय पत्र का हवाला दिया, तो जवाब आया कि हमें पसंद किया था तो चले आते हाथ मांगने, मेरा निर्णय मेरे माता पिता लेंगे, मैं नहीं, आप समय पर आते तो आज मैं आपके साथ होती, ये उन्होंने लिखा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि प्रायः बहुत रोचक तरीके से लोग उत्तर देते हैं, सभी हतप्रभ रह जाते हैं, पूर्ण प्रमाण के साथ उनका उत्तर देने का भाव सदैव संतुष्टि प्रदान करता है, ये इन्होंने इनकी दीदी के बारे में लिखा है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, जहाँ निसार अख्तर के बोल, एन दत्ता का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

ब्लैक कैट फिल्म का ये गाना आपने सुना, मीनू मुमताज और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इन दिनों मेरे बचपन के शहर मुंबई का मौसम कैसा है। तो जी हाँ, हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है और रोज़ दिन में कम से कम 5, 6, 10 दफ़े बारिश दस्तक देती है और पूरा शहर भिगो करके चली जाती है। ठंडी हवाएं चल रही है और आसमान पर फिलहाल बादलों का कब्जा है। तो ये मुंबई शहर का मौसम है। अगर आप घूमना चाहें या देखना चाहें इस शहर को, तो मौसम वाकई अच्छा है। अब एक साथी की बात है कि सोचो, सवाल न होते तो दुनिया कितनी खाली खाली होती। सवाल हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं और जवाब हमें आश्वासन से भर देते हैं। सवाल तो एक खाली पन्ना भर है जिस पर हर जवाब वो पन्ना भर देता है। कुछ जवाब हमें जीवन में सबक के रूप में मिलते हैं तो कुछ सवाल अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि यह है कि आप जानते हो कि किस सवाल का जवाब देना जरूरी है और किस सवाल पर चुप रहना जरूरी है। जी हाँ, यही परिपक्वता होती है कि किस सवाल का जवाब दें, क्या जवाब दें और कितना बोलना चाहिए, कितना जवाब देना है, इसी को परिपक्वता कहते हैं। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, एक उत्तर से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। पूरा ब्रह्मांड हमारे ही भीतर की जिज्ञासाओं का एक आईना है। हम बाहर उत्तर खोजते हैं जबकि मूल प्रश्न हमारे भीतर ही जीवित रहता है। अनसुलझे सवाल जीवन की रिक्तता नहीं बल्कि उसकी निरंतरता का प्रमाण है। धन्यवाद देते हैं आपको। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्त्री फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

किया, ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर, किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज़्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फ़ोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब दे देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए, एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसने उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं, अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियाँ आ जाती है, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए, अब तीन देवियाँ फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाज़ा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूँ तक पहुँचते पहुँचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों की बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि ज़िंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस किया था, तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज़्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज़्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

तू छुपी है कहाँ, महिपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहाँ तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हों जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है। ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहां कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से, कैफी आज़मी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम इस फिल्म का गाना आपने सुना। संगीत खय्याम का एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखती हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज़ दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance. And field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच

0: प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: PMFME की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOUs साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नया

0: ज्ञापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
1: सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार हैं हसरत जयपुरी। फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे लिखा है फारूक कैसर ने, धुन है जीएस कोहली की, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है शिकारी।

लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को अगले गीत में। बोल है राजेंद्र कृष्ण के, तर्ज है रवि की, फिल्म का नाम है शहनाई।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत कौर की आवाज में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं खय्याम, फिल्म का नाम है शगुन।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को, गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना चित्रगुप्त की, फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का
1: नमस्कार।
2: चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं, और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है। इसलिए डरना नहीं है और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे, लेकिन
1: और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट,
1: इसका पहला भाग।
2: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। हाँ। और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की, रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
2: बिल्कुल, और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा भी कर ली है।
1: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये हैं पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात।
2: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है। रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
2: अच्छा,
1: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब ये मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो, लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
2: बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और खा लीजिए।
1: मिठास लेनी है आपको, लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
2: बिल्कुल।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें

0: कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट।

ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था।

0: पहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
1: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
0: बहुत विनयपूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ।
1: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
0: कोई समय तो उनका ठीक नहीं है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे वो यहां नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं।
1: ओह, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा एक हफ्ता, कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी,
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
0: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं? हाँ हाँ हाँ हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में

0: चार दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।
0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: जी,
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
0: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला अजीब अजीब शंका।

आए उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी,

अभी आप सुन रहे थे कहानी छः आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं, जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपने मुश्किल से उभरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए। और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर

0: हमें हासिल होती है किसी काम में, तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरें और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी, आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया
1: ये
0: है।
1: सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीज़ें हमारी मजबूती बन जाती है।
0: हाँ।
1: और जब भी लगे कि मुश्किल ज़्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता
0: हाँ।
1: है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज़ आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने
0: बहुत
1: छोटे
0: छोटे
1: लगने।
0: हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने
1: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब
0: जी।
1: आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
0: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को,
1: और
0: मुश्किल
1: बड़ा
0: को
1: बना
0: बहुत
1: लेते
0: बड़ा
1: हैं,
0: बना
1: और
0: देते हैं।
1: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना
0: तो
1: होगा।
0: हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने

0: को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी
1: हाँ
0: मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
1: जी
0: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो
1: और
0: जाता है।
1: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं हैं। तो ज़रूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं आपके, चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
0: बिल्कुल।
1: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद दो चीज़ें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है लेकिन हुनर जो होता है वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
1: जी
0: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम 1 दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते
1: हाँ
0: हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीज़ों का असर कम होगा।
1: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: और खता।
1: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने हैं।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
1: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं,
2: बिल्कुल महान उन्होंने व्यक्ति जो हुए हैं, उनके
1: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
2: हाँ, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
1: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
2: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगे।

0: डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल की जिद पर अड़े रहना। तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, यह हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना।
1: इसी
0: और मुश्किल
1: तरह
0: समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो
1: जी
0: इस तरह की बातें कहकर हमारे हमारी हौसला अफजाई करे।
1: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बचे नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत
1: जी
0: सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि
1: बिल्कुल
0: हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हम साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक को शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़ककर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं, और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है
1: जरा
0: तभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वही बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं आप सभी को। मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत और जापान के व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते हुए हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide

0: diversity joined this delegation.
1: श्री गोयल 200 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ चार दिन की जापान यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनूर में आज गवर्नमेंट पॉपकॉर्निक परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों के करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग और 44% महिलाएं शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में UPI के जरिए केवल 1,78,00,000 लेन देन हुए थे। वर्ष 2025-26 में इनकी संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेन देन की कुल राशि 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314,00,000 करोड़ रुपए हो गई है। UPI अब भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य 11 देशों में भी काम कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से CBI को सौंपने की मांग की गई थी। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टरों को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह, पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के 25वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।
3: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
4: जी,
3: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
4: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
3: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
4: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जरा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां

0: जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए।
0: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं।
1: हाँ।
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: अच्छा आप बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है, तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।
1: 3 महीने के कितने हो गए? तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
0: 40-50
1: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए, आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं।
0: और पुरुषों में?
1: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, पर जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है
0: जी।
1: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपके हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं।
0: जिसको जो आपने टर्म यूज की,
1: हाँ,
0: ये क्या है?
1: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है।
0: ब्लू कलर की रोशनी में?
1: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें। तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं। और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू, सिंपल चीज है, एक अपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है। तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
0: जी बिल्कुल।
1: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन।
0: ये समझने की बात है।
1: ये समझने की बात है। तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है, और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के?
1: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट, एक डिग्री नहीं है।
0: जी जी।
1: हाँ, अभी

0: क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ,
1: जी
0: लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर। यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्माटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीज़ें, बाल्डनेस कॉमन चीज़ें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं कि किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कमी होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती हैं। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग,
0: और उसका असर बालों पर जाता है।
1: बिल्कुल
0: जी। महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: महिलाओं में PCOD नाम सुना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी PCOD हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
0: बढ़िया
1: तो बात, हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो PCOD और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि PCOD है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।

0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल,
1: पहले के जमाने में था तो क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
0: नहीं,
1: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया
0: जी, ये बहुत आज के जमाने की चीज।
1: यस, और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
0: जी,
1: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
0: एक तरह से आप जो हैं वो खानपान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खानपान ठीक नहीं किया तो
1: नहीं,
0: इसका
1: सभी
0: असर।
1: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती
1: दोनों
0: हैं।
1: चीजें अलग अलग है. एक तो
0: जी
1: मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहाँ हेयर फॉल होता है.
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन्स होते हैं अलग टाइप के,
0: ओके
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है. आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते, बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टू हार्मोन थेरेपी. आप इस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खान

0: फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
1: ओके,
0: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है। पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे और वहाँ उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, जब क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
1: इस उम्र में तो सबका होता, सबका, हमारा भी हुआ था।
0: बिल्कुल, यही डायलॉग होता है।
1: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं लेना।
0: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना, आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
1: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल,
0: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30-40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, चाय पत्ती, जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
0: मेहंदी, रीठा, शिकाकाई, ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
1: उल्टा हो जाएगा।
0: सी, इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनको इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे और आप मुझ में बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
1: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स कहलाएगा?
0: यस। सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
1: बिल्कुल।
0: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
1: जी,
0: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
1: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी। मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं

0: शेडिंग क्यों हुआ है।
1: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
0: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
1: यस,
0: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन हैं, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
1: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे।
0: यस आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
1: जी जी जी,
0: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
1: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
0: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
1: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
0: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर के वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी। कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
1: ओहो हो,
0: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
1: बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं काउंट। 1 महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
0: नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
1: इन अ मंथ है?
0: इन मंथ।
1: ओहो हो,
0: इन अ मंथ।
1: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
0: 12 सेंटीमीटर साल में।
1: हाँ, तो 10 साल में
0: तो आप करिए। तो
1: नहीं नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
0: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
1: ओहो हो,
0: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं।
1: लेकिन वो थिन रहेंगे।
0: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
1: जी,
0: तो वही कहना है वापस शेडिंग को पहले रोकिए।
1: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
0: बिल्कुल,
1: बहुत सही बात है, मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस,
1: बढ़िया गाना, कैफी आजमी का है। तो ये
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
1: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।

0: ये गाना हमने सुना और हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रचिता धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉयिंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से, तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है, पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए,
0: और यहाँ तो
1: उल्टा
0: का खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है, तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है, लाइनिंग, वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस, बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है, इसके साथ जब ये रिसर्च किया हुआ है, इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब ये मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
0: चिंता की बात है।
1: मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
0: जी
1: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
0: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी,
1: या।
0: और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है, ना इवन पैसिव स्मोकिंग। कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को

0: कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
1: तो ये समझने की जरूरत है।
0: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
1: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: यस,
1: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा सारा साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।
6: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे है और इसी के साथ ही हमारे आज के पहली सभा अब यहीं पर समाप्त होता है। दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी शाम के 6 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार शाम के 6:15 हो चुके हैं। स्टूडियो से मैं आपका दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी सभी सुनने वाले श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आइए अब शुरू करते हैं आज की दूसरी सभा। दोस्तों, अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:05 से आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत मार कार्यक्रम में आज कुछ मार भक्ति गीत जनसदिया गांगते और उनके साथियों के आवाज़ में।

7 बजे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए सुनते हैं डिमासा कार्यक्रम में। आज कुछ डिमासा आधुनिक गीत सॉल्ट्री स्कूल ऑफ म्यूजिक हाफलुंग के ओर से।

रात बसकर 40 मिनट से आप सुन पाएंगे कुकी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कुकी भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे खुपखोने हेंगना और उनके साथी।

आज बसकर 30 मिनट का समय रहेगा कुछ फिल्मी गीतों का। आज बसकर 45 मिनट से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या।

और रात के 9:30 से लेकर सुबह के अंत तक यानी कि रात के 10 बजे तक आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जॉन संध्या गांगते और उनके साथियों के गाए कुछ मार भक्ति गीत। इसी के साथ ही आज का मार कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हृदय बुंग जेमी और उनके साथियों के गाए कुछ जेमी लोकगीत। इसी के साथ ही आज का जेमी कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अवलोकन केंद्र है। दोस्तों, इस समय स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6:45 होने ही वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्या रांचलिक बातरी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सोल्ट्री स्कूल ऑफ म्यूजिक हाफलोंग की ओर से कुछ डिमासा आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰো আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अफलुंग केंद्र है। दोस्तों आइए आप सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम में आज कुछ कार्बी लोकगीत कंगबुरा तिमुंग के आवाज़ में।

long si manik dum arni si manik dum le si ju ping khat.

ร้อนหาจะเกการลีโดอารอนหันแอดอาหารลีตูนารอน

0: ตองตั้ง
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कांगबुरा तिमुंग के गाए कुछ कार्बी लोकगीत। इसी के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खुबखुने हिन्ना और उनके साथियों के गाए कुछ कुकी भक्ति गीत। इसी के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम और साथ ही आज के सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम समाप्त होते हैं।
1: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। एन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग एन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दे, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दे।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कुछ वेस्टर्न म्यूजिक।

दोस्तों आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हफलूंग केंद्र, और अभी आप सुन रहे हैं कुछ वेस्टर्न म्यूजिक।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ वेस्टर्न म्यूजिक। इसी के साथ ही समाप्त होता है आज का वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर या आकाशवाणी का अफलोन केंद्र है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। और सबसे पहले सुनते हैं डर फिल्म का ये गाना, उदित नारायण के आवाज़ में, शिव हरी का संगीत और गीतकार है आनंद बख्शी।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाज़ में, कयामत से कयामत तक फिल्म से। आनंद मिलन का संगीत और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं दिलवाले फिल्म से, कुमार सानू के आवाज़ में। संगीतकार है नदीम श्रवण और गीतकार समीर।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलुम केंद्र है। दोस्तों, इस समय इस घड़ी में रात के 8:45 होने ही वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
3: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
2: With a large domestic market.
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।

0: भारत को 70 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले चार वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
2: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक, परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.newsonair.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्सलफेन में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল আমাৰ বিকাশ।
1: आपकी गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपकी गीत
2: हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्युलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का आप लोग केंद्र है। दोस्तों आज सोमवार है, हर सोमवार रात के 9 बजे हम आपको सुनाते हैं असमिस गीतों का कार्यक्रम। तो आइए अब सुनते हैं कुछ असमिस गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ असमिस गीत। इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का असमिस गीतों का कार्यक्रम।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का आफ्लुम केंद्र है। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं इस सभा के अंतिम कार्यक्रम यानी कि फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। और सबसे पहले सुनते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से ये गाना। उदित नारायण अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में, नदीम श्रवण का संगीत और गीतकार है समीर।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं, हरिहरन और अलका याग्निक के गाया हकीकत फिल्म से। संगीतकार है दिलीप समीर और गीतकार नवाब आरजू।

दोस्तों आपने ट्यून किया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हफलों केंद्र, और अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगी। दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं बीबी नंबर 1 फिल्म से, हेमा सरदेसाई और कुमार सानू के आवाज़ में। संगीतकार है अनु मलिक और इस गीत को लिखा है समीर ने।

दोस्तों आइए अगला गाना सुनते हैं कुमार सानू और सदाना सरगम की आवाज़ में, गोट एंड गन फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने और संगीतकार है आनंद मिलन।

दोस्तों आइए कार्यक्रम का अंतिम गाना सुनते हैं डिस्को डांसर फिल्म से, सुरेश वाडकर और कुसुम मंगेशकर के आवाज़ में। पप्पी लहरी का संगीत और गीतकार है अनजान।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलुंग केंद्र है। दोस्तों, इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं। इसी के साथ ही आज की दूसरी सभा समाप्त होती है। कल सुबह पहली सभा में सुबह के 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपके दोस्त कृष्ण प्रसाद जोशी को दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।